ये वंग ती दिले वंग्रेश यखवा शीरिन जारोक शियार करिन बावु ब्रा कुष्टिन खुशक दाइक बिरिन नामुसे शरफ है।